उगु झोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद बैगमुलिसे समिति दुजो पिन्स पोटेकोसी खुसीबाल याना जिल्ला लाखुको धनजन्य क्षतिबारे विवरण यभ्यादिल वे झोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मी खुसीबाल याना पीडित पिनीको खोज उद्धार राहत पुनस्थापना लिसे आ तथ्य यामागु निर्णय या सम्बन्धे जुया चुङ्गु ज्याया बारे राष्ट्रपति पौडेल या त जानकारी ब्यादिको ख राष्ट्रपति पौडेल विदुर नगरपालिका दुई या कवर हले चुङ्गु होल्डिङ सेन्टर या अवलोकन याना अन चोना चोपी रसुवा वा नुवाकोट या खुसीबाल प्रभावित जुपी लिसे निनकनी नाप याना दिल निनकनी या झोले खुसीबाल याना प्रभावित जुपी नागरिक तेसम बटुकुसी वगु तचोगु खुसीबाल याना लाकुगु जनधन या क्षतिबारे जानकारी याक आदिको ख वेकअपिन्स खोज उद्धार र राहत नाप प्रस्तावना नीति सरकार वा गुहाली मिपिन्द अझ याक्न ज्या या त इनाप जनादिगुदु नेपाली सेना खुसीबाल याना क्षति जुगु जलभित्र आयोजना टनेल ब्रेक थ्रु मजु तले तक खोज लिसे उद्धार ज्या दिकेको मुखु धागुदु खुसीबाल याना प्रभावित जुगु जलविद्युत आयोजना टनेल थ्यामथ्य सचिव नि छम नारिक लाना चुङ्गु जुई फैगु धुकुमा यासे सेना खोज लिसे उद्धार या त तोचेको गुख राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण लिसे व्यवस्थापन प्राधिकरण पाखेमिक गुसागोको पत्रकार मु ज्या सायकरथी सुभाष सिंह थापा सरकार ज्या दिकेगु निने यागु अवस्था बाहेक ब्रेक थ्रु मजुतले तक टनेले खोज लिसे उद्धार या ज्या झ्याका हे चुनिगु धैदिल वेक या कथ त गति मधिक ज्या जुया हे चुङ्गु दु खुसीबाल याना प्रभावित जलविद्युत आयोजना थियामथे सचिव निछम मनुत लानाचुङ्गु धुकुमान सेना यागु वेक्न खनादिल र स्वागुडी जलविद्युत आयोजना खोज लिसे उत्तर पुच व आयोजना प्रतिनिधि लिसे या पुच पौराज लिसे कन्ट्रोल पोइन्टको वना माला चुङ्गु सागरती थापा धाइदिल नेपाली सेना विपद प्रभावित लागे खोज लिसे उद्धार या त हवाई जमिन व टनेल याना सुङ्गु खेले बोतला न्याका वया चुङ्गु नाप वेक्न कनादिल उगु झोले प्राधिकरण या कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेती खुसीबाल याना प्रावत अपोध हाई थे थासे राहत थिएन थुङ्गुको जानकारी ब्यादिल हेलिकप्टर पाखे खोज लिसे उद्धार रे प्राथमिकता बिया त गुली हेलिकप्टर पाखे राहत थेङ्के मागु चु थासे राहत इङ्के मफुगु वेक्न धैदिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाया सभापति रवि लामिछाने छाने ओ संयुक्त राज्य अमेरिका या विदेश मन्त्री मार्को रुबियो दथी मिग टेलिफोन सल ब्यागुदु टेलिफोन सलसम्म विदेश मन्त्री रुबियो दुःख या इले थपिन नेपा या जनता हो सरकार नाप छप्प जुगु यतना दिल सभापति लामिछाने थो इले थपिन त अमेरिकी सरकार यागु ग्वाली पति सुब्या नाप देश नादिल इन्टरनेट सेवा प्रायोजक वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे छगु करोड छगु लाख दाङ गुहाली यागदु वर्ल्ड लिङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी केशव नेपाल अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले या त नाप्लना दाङ गुहाली यादिगु ख खुसीबाल वर्ल्ड लिङ्कका नेटवर्कको पूर्वाधारे सुङ्गु करोड त्या दाँ शङ्का बिगुदु थोए झोले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छगु करोड स्वी च्यागु लाख प्रधानमन्त्री कोषे दाखिला यागुदु थोदा ब्याङ्कका पदाधिकारी व कर्मचारी पिनिगु पाखे मुकुगु ख भोटेकोसी खुसीबा ल पीडित विद्यार्थी या नीति शिक्षा या नीति सरकार सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना घोषणा यागुदु थो ज्याजुले नर्सिङ निसे चिनिगु तगिमे तक दोषी मस्ते त दुथाकेगु सरकार धागुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल हिक मन्त्रालय कोषागोगु ज्याजोसँग छगु अर्ब दाँ बराबर छात्रवृत्ति योजना घोषणा यादिगु ख रसुवा या पोटेकोसी खुसी वङ्गु भदोक दश गते वगु खुसीबाली पा प्रभावित लागे न्याकुगु खोजले चाहिँ उद्धार अभियान पाखे आतक चिन्सोद ओ सोस्व गुई खुमेसिया उद्धार यागुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनकरण लिसे व्यवस्थापन प्राधिकरण कथा उद्धार यापी मध्ये सोद ओ न्यासो ओ सुइसोम रसुवा नुवाकोट ओ धादिङ या सुई गुम होल्डिङ सेन्टर सुरक्षित गथ आश्रय कया चुङ्गुदु खुसीबा लिपा आतक दोची व सोसो व नियामसिया सिम लुगुदुसा पेद व गुस व गुई खुम अझ तनाचुङ्गु थागुदु

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड खुसीबाला याना प्रभा जुगु जिल्ला बिमा सेवा सहजकरण याइगु जुगुदो बोर्ड मिग छगु विज्ञप्ति पिथसे भदौ 10 गते भोट खुसी वगु खुसीबाला याना बामलाक प्रभावित जुगु थासे रसुवा नुवाकोरो धादिङे अफुइगु कथ बिमा सेवा बिगु धागुदो बोर्ड उगु जिल्ला स्वास्थ्य बिमा सेवा अफुगेगु कथ सञ्चालन याना नागरिक सहजकरण यागु तातुना स्वास्थ्य बिमा सेवा प्राधिक स्वास्थ्य संस्थाको छिनातोगु इतक स्वास्थ्य बिमा सेवा तुइगु सहभुक्तानी को पेमेन्ट क्यापिङ चिकेगु निने यागु ख क्यापिङ धाइगु छुन निश्चित सेवा व्या उपचार बिमा बिगु धेवया अपो सीमा धाइगु तुइके भई बोर्ड एक उगु लागे बिमित या स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्र मधुको अवस्था नाप सेवा प्राधिक स्वास्थ्य सेवा त बिहातको प्रणाली पाखे स्वास्थ्य बिमा नम्बर एकिन्याना स्वास्थ्य बिमा सेवा बितेङ्गु दु बोर्ड वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट लिसे प्रवक्ता डाक्टर पवन कुमार शाह स्वास्थ्य बिमा बोर्ड या उगु निर्णय लिसे रसुवा नुवाकोरो धादिङ्गा खुसीबाल याना प्रभाव जुपी नागरिक या त स्वास्थ्य सेवा क्या त अफुइगु यत्ना दिल मिगनिसी नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड अन्तर्गत तुइन खुसी लागे निथ झिगो सवारी साधन वे वनिगु बन्द जुइगु जुगुदु जिल्ला प्रशासन ज्याकुथे चितवन एकथ तुइन खुसी लागे सतक मर्मत व चा कटान याना पित्ता च्याकु ज्या नीति निश्चित यी कोसिया मिग सोमबार निसे निथ झिगो सवारी वे वनिगु बन्द या तिङ्गु जानकारी बिगु ख वङ्गु भाद्र 10 गते सुथे वगु विनाशकारी भोटेकुसी रसुवा खुसीबाली लाना बेपत्ता जुया चोपी थतिथि पिनीको मालिकको ज्या नेपाल सरकार मयागु गुनासो पङ्कुसे बेपत्ता छेज पिए या फिप ख्य माथि मण्डला थर्ना चोङ्गुदु चिन्सुनु दि तकन पोटेकुसी रसुवा खुसीबाली लाना बेपत्ता जुपी थतिथि पिनीको मालिकको ज्या मयागु गुनासो यासे थतिथि छेज पिन्सम हिग सोमबा माइति घर मण्डला धर्ना बिगुख वङ्गु भाद्र 10 गते वगु खुसीबाली पातना चोपी त्रिशुली तिन बी दुनिय ज्या याना चोपी थतिपिनीको माले त माघ यासे थतिपी ए थ्याङ्कु गु ख ए रात्रिकालीन यातायात सेवा न्याकेगु तयारी या आगुदु उकिया नीति अन्तरनगर यातायात सञ्जाल विकास यागु ए महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुन्दा डङ्गलन जानकारी ब्यादिको ख सोनिगा स्थानीय तह या सहभागिता सुनिश्चित याना दिगो प्रणाली पुलिस्ता यागु तयारी ए महानगर यागु ख ए महानगरपालिका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठ या कचित्ते निसङ्गु समिति थुजोगु अध्ययन पिकागु ख प्रतिवेदन परिचयनकालीन सेवा सोलाई ई यस समीक्षा याना तगु दु ए येल बुढा नीलकण्ठ चन्द्रागिरी सूर्यविनायक मध्यपुर ठिमी गोदावरी व किर्तिपुर नगरपालिका सक्रिय सहभागिता थो सेवा विस्तार यासा सोनिगया रात्रिकालीन अर्थतन्त्र चलामेन जुइगु निजी सवारी या निर्भरता मो जुइगु प्रतिवेदन केना तगुदु नेपाल भाषा सेनामी दबुया गोसला ए महानगरपालिका 22 वटा ग्वाली ए या नेवा सांस्कृतिक पुला भन्साले नेपाल भाषा प्रशासन साग मुपा ए महानगरपालिका शिक्षा औ स्वास्थ्य समिति या कची चिनिकाजी मर्जन हनपा लहलादिगुदु रितेश मल्ल या नासुई राजेन्द्र मर्जन ह्याकादिगु च्याजुले खुइद पुलकी अनिवार्य अवकाश बिमागु नेपाल सरकार नियम कथन थिति बनेको थिया श्याम नेपाल भाषा सेनापी राधेश्याम मर्जन प्रमिला तुलाधर कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ हसना मैया ब्रजाचारी रमा साक्य भावना वैद्य रित्ता अमात्य व तारा श्रेष्ठ पिन्त अवकाश जीवन सुख हनी फेमाताका पिन्तुना नाप हनी गुज्या जुगु ख किपु नगरपालिका 1 वडा थाम्बा त्वाले चुङ्गु नेवा लहना मिग सोम्बा निसे नि छदे चोङ्गुदु स्थानीय स्तर हे लजग्या बोलङ्कीगु नेवा संस्कृति परम्परा या त माखातेगु आज जुना स्थानीय हे कुतले नेवा लहना पलिस्ता जुगु ख ए महानगरपालिका पुलाम मेयर केशव स्थापित व नेवा लहना विश्व सरसाप अभियान अभियन्ता राजमान मानव व्यास सक्रियता व थाम्बा त्वा स्थानीय त्वावासी पनिको सक्रियता नेवा लहना पलिस्ता जुगु ख इन्डोनेसिया ज्वालामुखी त ज्या थुङ्का सोधो उडान लिचो लागुदो विमानस्थले थौन लिचो लागुले सुङ्गु लाग पिदो यात्रुतेत पङ्गले लागुदो राजधानी जाकार्ता 70 किलोमिटर तापागु अनाक्राका ताउ ज्वालामुखी शुक्रबार बहनी निसे तजना चोङ्गुदु
दक्षिणी लेब्रानिया छगु गामे चच्ची इजरायली आक्रमण लाना निम मचानाप चिन्च्याम सिग्दु इजरायल बिहिबार हिजबुल्ला या नियन्त्रण दुगु अली अल ताहेर पहाडी लागा कब्जा कागु दाबी यादुङका दक्षिणी नबातिह लाग्या आक्रमण यागु ख हिजबुल्ला थो दाबी बारे छुन लिचो पिकागु मरु थौ लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा या आपल थासे व मधेस प्रदेश नाप कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या तराई लागा या छु थासे न न्याना वा वैगु थागुदु कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी कर्णल प्रदेश या पहाडी व लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या पहाडी व तराई लागा छगुनीको थासे आपल वा वैगु दुग्मा यागुदु लुम्बिनी व सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा छगुनीको थासे अतिक वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मिग सोनिगोले नि च्यागु फुटी गुगु डिग्री सेल्सियस क्वाजो लुगुख थौन थथे लुइगु टुकमा यागुदु नेपाल भाषे बुख कोचाला शुभ है।

दि रेडियो नेपालिन आङसिरिङ लामा शेर्पा ने सिरिकेकी साङ्ग्युर सेनोनाङ जेन्जी ङोकुल किरिम्बाला सक गलुप जन्दा तुई ठेन्सोला आरिङ थेङ ताङबोला जेन्जी सहित तुसेन सिंवाय दि तुसेन कि कबला सिलोन तेजिन लोनसोक ल्याखुङकी सामाजिक सञ्जाल तेमा सहित तुई ल्यागेन कि ठेन्सो कि लक्ष्य सम्ब नङसिन लाका गोजुगोला सिंवाय मिछ्या तुई छ्यातेन्दुप लाम ताङ पुस्ता सम्ब कि रेवा नङसिन ट्याङभुक्या ने यम्बु गेलखप यर्गे जोपला दि तुसेन कि तेरिला सेमसुक फर्च्यु इच्छे क्यान वय विक्रम लोङितोङ गेचु ग्याङ बदौला कि गते निशु सुम तङ निशु जिकी छिर्मु क्यपो लकु मेता जब सुशासन टडिक किप सुवा जाङने सुङकी सामाजिक सञ्जाल तिव के कु खप्तेला जेन्जी ङोकुल चोङगुभिन ङोकुल कि रिम्बाला मिमाङ तुई रोक साङ बङे गलुभिन जेन्जी ङोकुल चोङसीमा तिपरकी सिलोन केपी शर्मा ओली कि सिलोन कि कोसाने गङबा सुसीमा अन्तरिम सुङ जो यिन जेन्जी ङोकुला रोक गलुप तिवला सुङकी सहित घोषणा क्याउ इन्सिसी लो ट्याङमा बदौला कि तेङिसु सुमकी छेर्मु दितुसेन च्याप थाक्चत क्याउन दितुसेन कि कपला आरिङ सुङकी गेलखाप नाङला सार्वजनिक कुङसाङ बिन्दुप सेन वय जेन्जी सहित तुसेन कि कपला गोमी सिलोन सुशीला कार्की कि सुशासन टडिकी तुप्ला तङ गेलखापला गिरुव जोप्ला मिमाङ तेरिकी दगदगपी दासने ट्याङबु ताङ च्याकु क्याने छाक्लेन नङ्गोला सुवय जेन्जी ङोकुल चुङ्गुप लोचिक लेपु निमी ठेन्सोला आरिङ सामाजिक सञ्जाल तेमा गोमी सिलोन कार्की कि जोन्दा तुई सुशासन टडिकी गौला तङ क्यपु लपु मेता जोगो सुवा जाङने लाम ताङ डिजिटल सञ्जाल तेमा तामिया ज्याक्सीमा जन्दा तुई रक गलुप सुङ्वाय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी छोक्सो रवि लामिछानेकी जेन्जी ङोकुल शोखा तुई शुक्ला मिन्दा क्याने जन्दा तुई चिसोक नाङला सुशासन टडिकी तुप्ला ताङ क्यपो लोकपु ङ्युङमो जोप्ला क्याउ सुङ्वाय हारिङ प्रेस विज्ञप्ति खेपेल क्यान छोक्सो लामिछानेकी जन्दा तुई जकु टिवाकी लेनगेकु दासला तादा खोङ तिव ओतुप सुङिन जेन्जी ङोकुल सबसित खेपसाङ्गी तन्दोकला थोकु म्याङ्गु सुङसुङ छोक्सो लामिछानेकी ङोकुल कि रिम्बाला रक गलुप तिवला कुदुत छु नगिन यालाखालाक स्वरूप मित्तिवाला मेन्जु क्यान तेरूप ताङ याङलुङ टडिकी तुप ल्यागेन सुङकी लङ्गो सुङसुङ जन्दा तुई क्याउ ङोकुल्ला ग्यालखाप यर्गे जब सुकी शिला गिरो जोगौला जन्दा ताङ मिमाङ तिव तेरिकी खसिक क्याने लाका कि गौसाङ छोक्सो लामिछानेकी सुङसुङ ग्याङसिङ तेजिन दलेन लक्ष्य लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी ननिङ जेन्जी ङोकुल कि तुसोला जन्द तुई जकु टिवा ताङ खम्चुकी लक्लेन कि तुप याम्बा थाप मेतुप सुङ्वाय जेन्जी सहित तुसेन कि कप्ला आरिङ रेडियो नेपाल ताङ क्यान सुङ्लप नगिन ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर तिमिल सिनाकी जेन्जी ङोकुल कि शिरा जौ तन्दी सुङ जन्दा तुई सुवा नङसिन रङ ग्यालखाप्ला क्यपु लोकपु ङ्युङमो जोइँ सुशासन टडिक कि तुप्ला लाका कि ओतुप सुङसुङ ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर विक्रम तिमिल सिनाकी तन्दी सुङ कि सुशासन कि शिला राका कि ओतुप कप्ला बदौला कि गते चितम्बी सेर्मुवाउ सोतोक्ला स्वरूप मिति छोलुप सुङक्योप कि तुप ताङ रातला खक्षण पुची नेसङ सुङकी लाका कि ओतुप सुङसुङ छोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी शतक त्यामा क्योन थोकु मितिवाला खक्षण पोची ने राहत सुङक्योप ताङ याङलुङ टडिकी गोला सुनाङ वाय आरिङ नुवाकोटकी होल्डिङ सेन्टर जिनगिन छोक्सो अर्यालकी राहत गोतुप लाका फेन्सनपुर ताङ ट्याङबु क्याने स्थानीय तहकी वडा वडा ने कि सुङसुङ धुराङ क्याने ग्याङसिङ लोनपो डाक्टर विक्रम तिमलिसनाकी रङजुङ कलेकी तुसोला लामजोप लाका सामाजोप लाका ताङ बेलिब्रिज जोप लाका ताङ तोरुप त्यो छोलुप्ला हुर्ता क्याने लाका कि गो सुङसुङ जम्बुलिङ ठोतेन छोकपा लो स्यार एसिया क्षेत्रीय छोकपी यम्बुला गलुप लोचिथा भने जुन अम्पुम ताङ मलक क्यौ प्याजा त्योला थोङ्गुप धनुष्टङ्कार नजा मोथोङ माथोङगुला सिकुर क्यान वाय डब्लुयासोकी एम्बी ग्याल्योङ खेलेन खप सेवा ल्यामु ताङ आङा केचे होतुप अम्पुम त्योला सुङक्यो भोतुप नेताङ जौतपकी धनुष्टङ्कार नजा मेता गलुप सिंह छोकपी दिन्जुथोन गुकी छोकदुला यम्बुला सिकुर क्याउन काठमाडौँ महानगरपालिकाकी अम्पुम्तीवाला गेकु पाठेघरकी खकी क्यान्सर नुम्की क्यान्सर ताङ अम्पुम्ती ठोतेन ट्याङ्गामाला क्याने परीक्षण कितुप गनवाए महानगरपालिकाकी वडा निसु दिनला त असोसलाकी गते चुपदिन जपेम्बी छेर्मु अम्पुम्ला गेकु ती नजा ती कोर्ला ट्याङ्गामाला क्याने ठोतेन जाँच कि ओतुप सेनवाए शोतक तेमा क्योन भोकु प्याजा तुई तन्दोकला सुङकी ट्याङ्गा अरब चिकी छात्रवृत्ति छर्सी घोषणा क्यान वाय लोभजुङ तेजिन सिर्मु लनखाङकी गिर्की लोप्टा त्योतङ क्यान डेलो तुप सोक्पा त्योतङ क्यान सिगडिल क्याने जिन्टा चिङी स्याक लोभजुङ कि ओतु पेजा तुई तन्दोक्ला छात्रवृत्ति तेरूप थाक्चुत क्याउ सेन वाय छर्सी नङसिन लोपटुक तोङ चिग्ला छात्रवृत्ति तेरूपला ताङ माजा न्योप तेप न्योप देतुप दासा ताङ साप समी टडिकी तुप्ला ती ट्याङ्गा तेरूप थाक्चुत क्याउ सेन वाय सतकी जसलेन्सी लोप्टाला डोमा थोपु पल्जोड न्याताङ यमजुङ्गा ओतुप ताङ पापा आमा त्यो टोकपला
शु ने नासागलु पेजाते वाला छात्रवृत्ति टंगा रोकरम कि तुप लोन खांकी शेन वे दासा दासाला गलने यापसी कि तुप तंग लोपटा वडा ल्याखुंग तंग स्थानीय तह कि सिफारिसला क्यों फोकु पेजातु मोशी कि तुप शेन वे बोटे को सी शतक तेमा रसुआ नुआकुर तंग दादिंग कि लोपटा चुरगुला क्यों फोकु ग्याकेन चुरुक तंग लोपटुक सही चिक तंग चुपदिन तोरुप तंग लोपटुक तोंग भूतंग सही दिन तंग शिवचु शि लोपटुक तुई लोपजुंगला क्यों फोकु थो तुप शेन वे बदौलाकी गते छिथम्बी छेर्मु बोटेकोसी चाङबुला वाउ शतकी जोसालेन्सी क्योन फोकु रसुवाकी उत्तर गया युल्सोक्पी वडा आङनिला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकी साफ समात्यो गोनवाए नेपाल रेडक्रसकी हेलिकप्टर तेमा ती चालकतियो खुर्ने खाङबा टुक्चुला गोनबिन्दु सेनवाए दुग्राङ्याने चितवन जोङखाला हुतु मितुई साङ बोटेकोसीला शतक तेमा क्योन फोकु मितिवाला रोक्रम क्यानवाए चोङखाङला हुतु मितुई पल्जोर टेङ्गा दुने ताङ श्रमदान क्याने क्योन फोकु खाङबी मितिवाला रोक्रम क्याउ सेनवाए थोतेन लोन खाङकी शतक तेमा क्योन फोकु सकुल्ला हैजा नजा खप्ते कि खप कल्ताङ वाए हारिङ नुवाकोट कि तन्दोक्ला तोङ गेचु सैङा ताङ यिसु सुम डोस हैजा नजा खप्ते कि खप थान चिथाम्बा फ्रिज फ्रि भ्याक्सिन ताङ सैङी ताङ यिसु आइस प्याक ताङ थोन गे थान गे फ्रिज ट्याक कल्ताङुप सेन वाए शतकी जोसालेन्सी थुङ्गुप छु ताङ च्याङ्गेज प्रणालीलाई क्योन गेप्सीमा हैजा ताङ छु त्यामा फेल्थोपु नजा फर्थोपु तपकी क्योन फोकु सकुल्ला खाक्सनपु सिने खप ल्यारिम जिङ्क्योङकी तुप ठोदेन लोनकाङकी सेतुपिन चिसोक नाङला सिधे टटिङला क्योन गेकु भिडियो ख्यापेलकी दुप काठमाडौँ जोङकी चन्द्रगिरी टङ्केर वडा आङ चिङी ओलम्बु देतुप लोङी सुजिकी वीरेन्द्र मडय जिम्बु सेनवाए बैतडी जोङकी सुर्नाया युल्सोकमा वडा आङ दिनकी वीरेन्द्रला साइबर ब्युरो ने लगलेन क्याउ कोर्सुङ मगमेकी जङिमी छेर्मु जिम्बु सेनवाए मडैकी बोटेकोसी शतक ने टोङबा ताङ मिमाङ रोकला क्योन फोकु कोर्ला मिरिक नाचोकला मर्चे क्याने तमिया लापु ताङ गासु क्याउ भिडियो जोने फेसबुकला जकु इन तन्दा तिङ्गी तुसोला सामाजिक सञ्जाल त्यामा ट्याङ्बु मिदुप लेन ताङ साङ्गुर्त्य तोङ्गुप्तुई खप्तेला कोर्सुङ मगमेकी ठिम तम्बु तोङिन वाउ सेनवाए रसुवाकी बोटेकोसीला वाउ शतकला स्वर्ने नासा गलुप्तु थो तन्दा सेक तोङ चिक्ताङ सही सुमताङ ङपचुङा दिनलेपु सेनवाए फुङबुतु मोसीकी तन्दोक्ला डिएनए नमुना दुने तन्दा सेक फुङबु तोङ चिक्ताङ सिप्चु सियाजी मुक्तुम नाङला जाङने टरी क्यान सिन्दुप सेनवाए फुङबु मोसीकी तन्दोक्ला नासा गलुपमी तोङ चिक्ताङ सही निताङ गेचु ताङ खाङबी तोङ चिक्ताङ सही निताङ गुप्चु क्याने मिरा तोङ निताङ सही ङताङ दिन्चुकी डिएनए नमुना दु सेनवाए तुग्रां क्याने ङोसी माप्यौ तोङ चिक्ताङ सैसुमकी फुङबी थो एमबी कोर्सुङ मकमीकी वेबसाइटलाई जाङधुप सेनवाए शतक तेमा क्योन फोकु सखुल्ला सुङ्ग्युप कितुप तोरुप्तिय छोलुप राहत गोतु फुङबुटी कितुप लाकाला तन्दा सेक कोर्सुङ मकमितियो मिरा तोङ दिन्ताङ सै गुताङ चिङी कोर्सुङ मकमितियो लगलेन क्यानोधुप सेनवाए कोर्सुङ मकमिकी तन्दा सेक तोरुप तोङ झिताङ दिन्छु थोन दिनला छोलिनोधुप सेनवाए तन्दा सेकला कोर्सुङ मकमिकी तोङ चिक्ताङ सै सुमताङ सिप्चु स्यागेला सुङ्ग्युप क्याउ सेनवाए पाल्पा जोङखाला मिमिरा सैङी ताङ ङपचुङा आङाला डेङ्गु नजा थोङ्गु सेनवाए तन्दी पल्जोर लोङी तोङ गेचुग्या सुम ताङ गेचुग्या जिकी साउन ताङ बदौ लाला पाल्पा जोङखाला मिमिरा सैङी ताङ ङपचुङा आङाला डेङ्गु नजा थोङ्गु ठोतेन ल्याखुङकी ल्याब टेक्निसियन मधुसूदन भट्टराईकी ख्यान्तोक नगुबिन तन्दा पाल्पा जोङखा डेङ्गु नजाकी थोरिम कलेला उतुप सेनवाए तन्दा यर्बी तुसोला छुखिरु ताङ लामखुटे फेल्थुपु खोर्यु कुङ्गुप तपकी डेङ्गु नजा फेलुप ठोतेन ल्याचत पतुई सेनवाए रेडियो नेपाल ने सेरी के साङ्गुर डुप्सुङ तुझी छे।

वा एक मजमून जरूर सुनिए, जिंदगी आसान हो सकती है। उनका मजमून यूं है कि कभी हमने गौर किया है, ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी की उम्र रब्बुल आलमीन के हाथ में है, फिर भी ये फर्ज कर लें कि हम 60 साल जीते हैं। इन 60 सालों में अगर हम रोजाना 8 घंटे सोते हैं तो गोया हम 20 साल सोने में गुजार देते हैं, और अगर हम रोजाना 8 घंटे काम करते हैं तो ये भी 20 साल बनते हैं, और 15 साल पर मुहित हमारा बचपन है। अगर हम दिन में 2 मरतबा खाना खाते हैं तो इसमें भी कमोबेश आधा घंटा खर्च होता है। यूं हमारी उम्र 3 साल खाने में गुजर जाते हैं। खाने पीने, सोने, काम करने और बचपन के ये साल मजमूई तौर पर 58 साल बनते हैं। बाकी बचे 2 साल। अब सवाल यह है कि हम इबादतों में कितना वक्त खर्च करते हैं। रब्बुल आलमीन ने अगर हमसे रोज़े क़यामत की पूछ लिया कि हम अपनी उम्र किन किन कामों में सर्फ किया है तो हमारा जवाब क्या होगा? 100% सही बात ज़रा गौर से सुनिए। कुरान करीम के कुल सफ़ों की मजमूई तादाद 600 या 604 से ज़ायद नहीं है। इन 600 सफ़ों को हम 30 दिन में तकसीम करें तो कितने सफ़े हम रोज़ पढ़ते हैं? आप परेशान न हों, बहुत आसान हिसाब है। 600 तकसीम 30 बराबर 20, यानी 20 सफ़ा रोज़ाना। चूंकि हम रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 20 को 5 से तकसीम करें, जवाब आएगा 4। अगर हम हर नमाज के बाद सिर्फ 4 सफ़ा पढ़ते हैं तो हम रोज़ाना 20 सफ़ा की तिलावत कर सकते हैं। यूं एक माह में हमारा कुरान तकमील पा जाएगा और हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा और इंतज़ार करें, पैगाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आखिर तक सुने, थोड़ा सा बाकी है। अगर हम ये पैगाम अपने तमाम दोस्तों को सुनाते हैं तो वो हमारी वजह से ख़त्म कुरान, तो क्या इसका सवाब हमें भी मिलेगा? जब हम में से किसी का कुरान ख़त्म होगा, हमारे आमाल नामे में लिखा जाएगा, तो हम ये मुनाफा बख्श मनसूबा क्यों न शुरू करें? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि लोग हमारी वजह से कुरान मुकम्मल करें? क्या हम इस बारे में अभी भी सोच रहे हैं? नेकी की रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह होता है। जो शख्स रब का कुर्ब चाहता है वो इन बातों को दूसरों को भी बताते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इसकी तौफीक दे। इंशाअल्लाह हम सब को भी कई गुना सवाब मिलेगा। सामिन, आज़म के तन्हाई के इस मजमून के बाद अब फिर से पेश खिदमत है एक नज़म जिसका उन्वान है, सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, मेरे दोस्तों ज़िंदगी एक सफ़र है, कहीं ठहर न जाने की कोशिश करना। आवाज़ है ओसामा खान की, समाप्त फरमाएं।

लासो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुरसी सम्मत 2862 तालु यान्दे लाला छेपाङ इचुई सेङ्गिस विक्रम सम्मत 2063 साल भदौ लाला छेपाङ इचुई से सोम मेरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेन्बुला ङा सूर्य मक्तान जेन्जी आन्दोलन न दुईरी राङ्ला लुइचोल बा ब्योन गते डानबन तिनी नेपाल से गिक्चारेम जेन्जी सहित दिन्छेन दाङ बम्बुला दिन्छेनला अप्सरी काइब्लोन थेन ब्लोनसेङ जाङला गेदिम से सामाजिक सञ्जाल ग्याम सहित गदेला योगदान डानबन प्रविधि छार प्रवर्तन थेन हिल्ली पो बाबारी छार सोच ल च्याम्रे गेला बारी बेनादन मोइजेन ला बम्बुला काइब्लोन गेदिम से छार प्रविधि छार प्रवर्तन थेन हिल्ली पो बाबारी छार सोच थोब सहित गदेला योगदान दा लामन ग्रेन मुला बिसे पाङ बम्बुला गानमा गदेसे हुनमा ग्याम थेन छार ब्योन लताम दा किन्सी निष्पक्ष थेन पारदर्शिता से छार नेपाल सुबारी चु दिन छेन से प्रेरणा पिन्छेर मुला बिसी विश्वास गेदिम से ला बम्बुला 2082 साल भदौलाला ङिचु से सोम थेन ङिचु से ब्लिकुनु जेन्जी ब्योन से सेङमा आन्दोलन भ्रष्टाचार नुङमा ग्लेठिम सुशासन थेन सरकारी जवाबदेही तला माग लबन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लाबाला विरोध लबन युल क्योङ निन आन्दोलन सेङ बम्बुबा आन्दोलनला दुईरी लामन मिलुई क्षेत्रीता बम्बुबा जेन्जी ब्योन्ग देला आन्दोलन लिच्छ थे दुईलाई काइब्लोन केपी शर्मा ओलीसे राजीनामा पिन बम्बुबा विषाम थेली छ अन्तरिम सरकार सो बम्बुबा जेन्जी आन्दोलन रे लुइचोल बागते सरकार से सहित घोषणाला से दिङनुन थाङ से भदौलाला घिचु से सोमकुनु जेन्जी सहित दिन्छेन दाङबा निर्णय लाभ हिन्न दिन्छेन अवसर तिनी सरकार से सार्वजनिक विद पिन बम्बुला जेन्जी आन्दोलन से थिए सुशासन पारदर्शिता भ्रष्टाचार नियन्त्रण जवाबदेहीता थिइन् सार्वजनिक सेवा ज्याबसोबा ताम नेपाल ल गेठिम थिइन् प्रशासनिक काठुई लाबरी दान देनुन महत्वपूर्ण मुद्दा धो सिटी बम्बुला दिन्छेनला अप्सरी गाँचला काइब्लोन सुशीला कार्किसे सुशासन थिन हिल्डी पो बाबरी रङ रङला ग्लाग्याम्से इमान्दार थिन जिम्मेवारता सिगे लबाला घेलबारी बेनादन मोइजेनला सिबम्बुला जेन्जी आन्दोलनला दिङ्गिक छ्यो बरे त डानमान तिनी सामाजिक सञ्जाल ग्याम गाँचला काइब्लोन कार्किसे निर्दोष ब्योन गदेसे सुशासन जवाबदेहीता पारदर्शिता थिन खाबरे ज्याबसोबरे माग्लबन सडक थिन डिजिटल सञ्जाल ग्याम ताम थिमा राङला लुइचोल दो बताम तदो बमुबा बिसे संक्षेप बमुबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चोहो रवि लामी छानेसे सडक ग्याम छार ब्योन सिङ्गै प्रश्नलाई जवाब पिनमा ग्लारी राङदान्ते दो बमुला विशेष संक्षेप बमुला चोहो लामी छानेसे तिनी गोर्खे कागुर छिसे जेन्जी आन्दोलन खाजी बन दल विशेषलाई मोइजेन्डी सेङमा आन्दोलन आइन विषय संक्षेप हिन्न चुनाव नसे सूचना थिएन संसार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा से तुयुङमाला जेन्जी विद्रोहलाई दुईरी छार ब्योन गदेसे थिब तामदा कार्यान्वयन नभरी दान्देला सरकार से बाङ्ला सेला मुला विशेष संक्षेप बमुला जेन्जी सहित दिन्छेला अवसरी तिनी रेडियो नेपाल लिङ्गमेला चुमान संसार ब्लोन डाक्टर तिमल सिन्हा से जेन्जी विद्रोहला जग्री शोभा दान्देला सरकार ब्योन गदेला माग अनुसार हिउँडे भ्रष्टाचार नियन्त्रण लबन सुशासन कायम लबरी बाङ्लाबन खाप मुला विशेष संक्षेप हिन्न संसार ब्लोन डाक्टर तिमल सिन्हा से सरकार सुशासन लताम्ने गे लबन भुवा दुईरी चुनन भदौलालाई चुइकुनु भोटे कुसी गान्धीरे खापा भाले प्रप्त शिवा थेन महाभविता माइबरी उद्धार लबरी थेन राहत बोलबन मुसाइनुन सरकार राङला दोखाङ्याम थारेङ आथना राङला गे लबन खाप मुला विषय सुङ्छु बमुला सुङमुन डोल प्रसाद अरियाल से भालथेन ढुई प्रभावित हुलबादा म्युरी थान से राहत बोलाबारी उद्धार लाबारी थेन पुनर्स्थापना लाबा गेदा प्रभावकारी सोबारे मोइजन लास्यो बमुला नुवाकोटले बुबा होल्डिङ सेन्टर कोर्सी च्यासिबान सुङमुन अरियाल से राहत बोलामा गोर्खे ग्लाग्याम से चेकेन बोलाबा ठिम लागुला से स्थानीय तहला ओडा ग्याम बोलाबारी मोइजन लास्यो बहिन्न राहत हुलबादा दोनलाबारी आखामसाम थेला खाजिबेन अर्थ आता विशेष सुङसिबान सुङमुन अरियाल से विपत्ति छ महामारी लेबारी खाम्बसे फोहोर व्यवस्थापन थिएन सरसफाई लबा ताम्रे ध्यान पिर्मरिनु मोइजेनला शुभमला लुइथेन चाबसे स्वच्छता ब्लनखाङसे भाल प्रभावित थुम्री हैजाला संक्रमण लेबारी खाम्बसे थेरि हैजा फान्ना लबारी खाम्बा खोप पुइबमुला तिनी नुवाकोट जोङदा तोङ भ्रेचुई गार्जाङासे गोरसोमचुइसे गोरङिचुई से सोम डोज हैजा मानलाबा खोप थेन गोर्ची फ्रिज फ्री भ्याक्सिन क्यारियर ल छ्याम्रे लामन से गते पिबमला बिसे ब्लोन खाङसे पाङ बहिन्न भालसे थुङमा क्वि थिएन सरसफाई प्रभावित तसे हैजा थिएन स्यान क्वि ग्याम लागब तब ह्यामला जोखिम लागब तबरी खाम्बासे भाल प्रभावित थुम्रे संक्रमण काधोबा ताम्दा प्राथमिक तपिन्सी खोप अभियान छेङमारी छेबमुला बिसे ब्लोन खाङसे पाङ बमुला
चुनन भदौलालाई चुई कुनु भुटेको सी गान्धेरी खाबा ग्रेन भासे सडक ग्याम गदे ब्योङनेलाबा थे नोङनेलाबालेछा निबरी आखाबा रसुवा जङ्ला उत्तर गया गाउँपालिका घिरे नेपाल ग्रेड क्रस सोसाइटी से चापसे गदे बोर्से बोला बोला नेपाल ग्रेड क्रस सोसाइटी से हेलिकप्टर ग्याम चापसे गदे बोर्से गोल ढुचुई दिम थेमेदा चापसे गदे बोला बहिन्ना चुनानु लसी चितवन जोङला झेल्ने मुबा कैदी बन्दी खादेसे नुन भुटेको सी गान्धेरी खाबा भाल प्रभावित गरिदा तिबा नानबा पिन्छी रोला बोला कैदी बन्दिसै टाङ्गा रूपसी थिएन श्रमदान लसी भाल प्रभावित दिम्थेमेदा तिबा नानबा सामान पिन्छी रोला बहिन्ना चितवनना ग्रेन्जोङ अधिकारी गणेश अरियालदा कैदी बन्दिसै डस्ना ब्ल्याङ्केट तन्ना खुम खुम्ला खोल गम्छा नैनी साबुन सौम्याप ब्रस मन्जन थिएन काङ्गै रङमा सेगदे ग्लुसी पुई बहिन्ना कैदी बन्दिसै गार्जेके घेन्से तोङ हि दोना टाङ्गा थिएन श्रमदान लसी भाल प्रभावित तो बसेगदे पुई बहिन्ना सामाजिक सद्भाव नोङनेलाबारी माइबा भिडियो सोसी सामाजिक सञ्जालले पोस्ट लाबा याम्बु चन्द्रगिरी नगरपालिका चुइसे नि बलम्बु विभाग लारी टिबन खाबा नि चुइसे ब्लिदिङला वीरेन्द्र मडैदा प्रहरी से चुङबा मुला बैतडी जोङला सुनरिया नगरपालिका निस्दिम तसिदान्ति याम्बुरी टिबन खाबा वीरेन्द्र दा साइबर ब्युरोला प्रहरी से चुङबा हिन्ना काभ्रेपलाञ्चोक जोङरी तोङढुबीमा लामा सानामा आरेबा सुकुम्बासी दलित थिएन अव्यवस्थित रूपले टिबन खाबा युल्बासे राङ्दा सातोजी विषय निवेदन पिँडमा मुला सरकार से सानामा आरेबा कादेला समस्या छाङ्न लाबारी प्रक्रिया तिबलिछा राङ्ला मिन्री सा याङ्ला वा बिबला आशालासी निवेदन पिँडमा हिन्ना दान्देदोनामा तोङढु गार्ज सोमसे मेन्दोङ चुइसेकु सानाम आरेबा सुकुम्बासी दलित थिएन अव्यवस्थित रूपले टिबन खाबा कादेसे निवेदन पिँडमा मुला विषय जोङला नापी गेदिम्से पाङ्बा हिन्ना जुङ सानम समस्या छाङ्न लाबा समिति रि सानम आर्यबकादेशी निवेदन पिनमा मुलापेसी नापी गेदिमला ग्रेन्पो अशोक भूषाल से सुङबा हिन्ना युल्चोहोर रामचन्द्र पौडेल से युल्थेन युल्बादा ज्याबा लेबा तागै बिसी तिनी पशुपतिनाथ लाथन्डी मोय बोला सि बमला युल्चोहो पौडेल पशुपतिनाथ लाथन्डी दोषी युल्थेन युल्बादा ज्याबा लेबा तागै बिसी मोय बोला बताम युल्चोहोला लोन खाङसे पाङबा हिन्ना चेपाङ्गदेसे चुपाल्से छोनाम नुवागी तिलमा राङराङला दिमदिमरिन दाङबा मुला भोटेकुसी गन्धेरी ग्रेन भाल्थेन दुई खासे युल्बादा दुङ्गाल तानला बसे चेपाङ्गदेसे चुपाल्से राङराङला दिमदिमरिन गच्छे अनुसारला प्रिभा दाङबा हिन्ना निबा दिङ्गदेरी विसाम चेपाङ्गदेसे नुवागी प्रिभा ग्लागी ग्रिजोम्सी दाङमान खाबा मुबा चेपाङ युल्बासे नुवागी प्रिभादा ग्रेन सांस्कृतिक थिन धार्मिक प्रिभाला रूपले दाङमान खाबा मुला दिङरुन दाङसे भदौलाला घिचुसे घिकुनु अर्थात् तिलमा विशेष रूपले नुवागी प्रिय दाङमान खाबा चेपाङ्गदेसे चुपाल्से विषम खाजी बेन तडक भडक थिएन औपचारिक घिएको रासेङ्ना रिमठिम अनुसार दिमदिमले दाङमा मुला बेसी नेपाल चेपाङ सङ सेपाङ बेहिन्ना चुनन ताङरी नटुवा हिलवासै नटुवा जातिदा लोपुन्मुख जातिलाई सुचिरी थानबारी सरकार द माग्ला बुमला कपिल वस्तु जोङरी छुआछु ग्यार्जसोम दिमदुरी नटुवा हिल्बा दान्दे टिबन खाबा स्याप मुला विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओला स्लो स्यार एसिया क्षेत्रीय समिति से नेपाल दा चुइदिङ चाहिन्छे आमा थिएन कोला दा दबा धनुष टङ्कार ह्यामदा भानाला बारी खम्बा से सम्मान लाभ मुला डब्ल्युएचओ से कुङमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गुणस्तरीय खोप सेवा थिएन सुरक्षित प्रसुति अभ्यास ग्याम धनुष टङ्कार ह्यामदा छाङ्ना लाबारी खम्बा विमान समितिलाई निश्चय से कुछ साङ्ग्री नेपाल दा सम्मान लाभ हिन्ना चुरानु लसी याम्बु महानगरपालिका से जाजा जामे कोला कादेला जाजा ताङला सुङ्री ताबा क्यान्सर निरी ताबा क्यान्सर थिएन जामे कोलाकाले ताबा स्यान ह्याम गदे सेन्देरी परीक्षण लासी पेन्सिला ताबा मलाई याम्बु महानगरपालिकालाई वडा नम्बर घि चुइ सेङ्गिस से खाबा असोज लाला चुइ सेङ्गिस कुनु जामे कोलाकादे ताबा ह्याम गदे सेन्देरी लुइ जाँच लासी पिनबारी छे बहिन्ना चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्रे तिनी तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान बन्लासुगु नसो फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जा। जेएनजी आन्दोलनके क्रममे ज्यान गुमनिहार युवाक स्मरणमे आइ नेपाल पहिल बेर जेएनजी शहीद दिवस मनाओल जा रहल अछि। दिवसके अवसर पर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालय सामाजिक सञ्जाल मार्फत शहीद सभक योगदानक स्मरण करैत प्रविधि नव प्रवर्धन आ परिवर्तनक नया सोच सहित आगू बढ़बाक लेल आह्वान कयलक अछि। प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रविधि नव प्रवर्तन आ परिवर्तनक नया सोच रहल शहीद सभक योगदान अतुलनीय रहल उल्लेख कयलक अछि। अग्रज सभक मार्गदर्शन आ नया पुस्ताक चाहनाक जोड़ैत निष्पक्ष पारदर्शी आ सम्भावना सँ भरिपूर्ण नेपाल निर्माणमे आगू बढ़बाक लेल दिवस सभके प्रेरणा देबाक विश्वास सेहो कार्यालय व्यक्त कयलक अछि। 2082 साल भादव 23 आ 24 गते भेल जेएनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यथिति, सुशासन आ सरकारी जवाबदेहिताक मांग सङ्गे सामाजिक सञ्जालों पर लगाओल गेल प्रतिबन्धके विरोधमे देशव्यापी रूपमे फैलल छल। आन्दोलनक क्रममे भारी मानवीय क्षति भेल छल। जेएनजी आंदोलन में ज्ञान गुमनिहार सबके सरकार शहीद घोषणा कलक है। हरेक वर्ष भादव 23 गते जेएनजी शहीद दिवस मनेबाक निर्णय कलक है। सरकार आई देशभर सार्वजनिक छुट्टी सेहो दिलक है। प्रधानमंत्री कार्यालय संदेश में अग्रज के अनुभव आ नया पुस्ताक ऊर्जा तथा प्रविधि से जोड़ कर नया नेपाल निर्माण कल जेबाक बात पर जोर देल गेल है। आई जेएनजी शहीद प्रति सम्मान करैत देशभर स्मृति दिवस मनाओल जा रहल अछि। यही अवसर पर काठमांडूक वनेश्वर में जेएनजी शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रमक आयोजन कर जेएनजी शहीद दिवस मनाओल गेल। जेएनजी शहीद कल्याणकारी समाज द्वारा आयोजन कयल गेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि गृहमंत्री सूदन गुरुंग उद्घाटन कयने छलथि। बीतल वर्ष भादव 23 गते भेल जेएनजी आंदोलन के एक वर्ष पूरा भेल अवसर पर दिवस मनौलक अछि। जेएनजी आंदोलन में 76 गोटेक निधन भ गेल छलनि। कार्यक्रम में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम, पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लमसाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल, पर्यटन मंत्री खरक राज पौड़ेल गणेश, विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता, कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी, जेएनजी शहीद परिवार सहितक सहभागिता रहल छल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल देश आ जनता के हित आ कल्याणक कामना करैत पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कयलनि अछि। प्रथम महिला सविता पौड़ेल सहित ओ पशुपतिनाथ जा देश आ जनता कल्याणक कामना करैत आइ भिनसर मंदिर में पूजा अर्चना कयल राष्ट्रपतिक सचिवालय जनौलक अछि। ओहि अवसर पर ओ पुजारी सँ फूल प्रसाद सेहो ग्रहण कयने छलथि। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल बाढ़ आ भूस्खलन सँ प्रभावित नागरिक के केन्द्र में राखिकऽ राहत उद्धार तथा पुनःस्थापना काज प्रभावकारी बनेबाक हेतु आग्रह कयलनि अछि। नुआकोट स्थित होल्डिंग सेंटर के अवलोकन के क्रम में सभामुख आर्याल राहत वितरण में एक द्वार प्रणाली लागू कऽ स्थानीय तहक वार्ड मार्फत वितरण कयल जेबाक बात बतौलनि। राहत जनता धरि नहि पहुँच सकला पर ओकर अर्थ ओ विपद पश्चात महामारी फैल सकबाक कारणे गंदगी व्यवस्थापन आ सर सफाई में तत्काल ध्यान देल जेबाक धारणा सेहो ओ रखलनि। ओ बाढ़िक कारण परिवारक सदस्य गुमाओल आज घर जमीन सेहो गुमाओलाक नागरिक सब एखन आक्रोशित होयब स्वाभाविक भेल। चर्चा करैत तत्काल पीड़ित के राहत आ भरोसा देल जेबाक बात पर जोर देलनि। प्रभावित के आवश्यक पड़ला पर सहूलियत में भाड़ा के व्यवस्था कऽ अस्थायी रूप में राखल जा सकबाक हुनक कथन छल। सभामुख आर्याल विपद व्यवस्थापन में स्थानीय सरकार के अग्रपंक्ति में राखि कऽ राज्यक अन्य निकाय के सहयोगी भूमिका में परिचालित कयल जेबाक बात बतौलनि। राहत तथा उधार में समन्वय व्यवस्थापन कमजोर देखल गेल उल्लेख करैत ओ अधिकारिक सूचना नियमित रूप में सार्वजनिक कऽ सकला पर भ्रम हटाओल जा सकबाक बात बतौलनि। संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा विपद के समय में एक घंटा सेहो समय नहि फेकबा हटेबाक हेतु आ नष्ट नहि करबाक लेल संबंधित निकाय के निर्देशन देलनि अछि। ओ समस्या देखल गेला पर तत्काल समन्वय का समाधान कयल जेबाक चर्चा करैत बेत्रावती पुल, झुलुंगे पुल तथा बेली ब्रिज निर्माण आ सड़क संपर्क पुनः स्थापना के प्राथमिकता देल जेबाक धारणा रखलनि। मंत्री तिमिल सिन्हा प्रभावित क्षेत्र में ड्रोनक प्रयोग भ रहल आ ट्विन जोड़ल गेल बेली ब्रिज निर्माणक काज आगू बढ़ रहल जानकारी देलनि। होल्डिंग सेंटर तथा फील्ड में आवश्यक जनशक्ति स्रोत साधन परिचालन कयल जेबाक हुनक कथन छल। नुआकोटक प्रमुख जिलाधिकारी समूह प्रसाद रेग्मी जिला में संयुक्त रूप में राहत तथा उद्धारक काज भ रहल जानकारी देलनि।
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीक सभापति रवि लामी छाने सड़क से नवयुवा सब द्वारा पूछल गेल हरेक प्रश्न के जवाब देबाक ठाम में समय में हमरा सबके उठाओल आ ठार कयल समय ओ बतौलन अछि। सभापति लामी छाने आई एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जेएनजी आंदोलन कोनो दल विशेष के आह्वान में भेल आंदोलन नहीं भक ई समग्र युवा के आंदोलन भेल बतौलन। काल्हि सड़क से नवयुवा सब पूछल हरेक प्रश्न के जवाब देबाक ठाम में समय आई हमरा सबके ठाड़ कलक अछि आ ई सेहो समझौलक अछि जे हम सब जवाब मंगबाक लेल काल्हि पुनः वही ठाम आ क्यों रहत। सभापति लामी छाने द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहल गेल सभापति लामी छाने जेएनजी आंदोलन कोनो दल विशेष के आह्वान में भेल आंदोलन नहीं भेल सेहो स्पष्ट कलन। कोनो दल विशेष के आह्वान में भेल आंदोलन नहीं छल आ पूर्णतः स्वस्फूर्त जागरण छल ओ कहलन। ए तें कोनो राजनीतिक दल वा नेता अहि के अपन संकुचित राजनीतिक लाभ के औजार बनेबाक दुस्साहस नहीं करब से हुनक कथन छल। प्रधानमंत्री राहत कोष में लगभग 12 अरब टका जमा भेल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय के अनुसार आइ भिनसर 9 बजे धरि प्रधानमंत्री दबी प्रकोप उद्धार कोष आ प्रधानमंत्री राहत कोष में 11,77,67,261 जमा भेल अछि। अखन 9 वाणिज्य बैंक में 8,59,19,00,000 आ 4,223 मौदात रहल अछि। राहत कोष में जमा भेल रकम से इससे पहिने 1 रसुआक बाढ़ पीड़ित के लेल राष्ट्र विवाद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणक नाम में निकासा भ चुकल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय जनौलक अछि। अहिना हिमालयन बैंक लिमिटेड लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड में रहल डॉलर खाता में 2,11,08,471 जमा भेल सेहो कार्यालय जनौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्राकृतिक विपत्ति से सहारा विहीन भेल नारी के संरक्षण राज्य के कैल जेबाक बात बतौलन अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक जिला समिति द्वारा आई आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में ओ बाढ़ पीड़ित तथा विपत्ति से प्रभावित नारी के तत्काल राहत संग दीर्घकालीन पुनर्स्थापना संरक्षण के जिम्मेवारी सरकार द्वारा लेल जेबाक बात पर जोर दिलन। ओ पैघ देश द्वारा कैल गलती के असर नेपाल सन छोट देश भोग पड़ल उल्लेख करते अध्यक्ष यादव पीड़ित के पक्ष में न्याय आ क्षतिपूर्तिक लेल अंतर्राष्ट्रीय तह में आवाज उठाओल जेबाक बात बतौलन। अहि के लेल संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल जोरदार रूपे अपन धारणा राखल जेबाक ओ मांग कलन। कार्यक्रम में जसपा नेपालक जिला तथा स्थानीय तहक नेता तथा अगुआ कार्यकर्ता के सहभागिता रहल छल। मध्य प्रदेशक विभिन्न जिला में वन अतिक्रमण नियंत्रण अभियान के गति देल गेल अछि। गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में मध्य प्रदेशक जिला में 154.55 हेक्टेयर क्षेत्र पर वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कैल मध्य प्रदेश वन निर्देशनालय जनकपुर धाम जनौलक अछि। वन निर्देशनालयक सूचना अधिकारी सदन चौधरी के अनुसार परसा में 120 हेक्टेयर वन क्षेत्र, बारा में 21 हेक्टेयर, सप्तरी में 5 हेक्टेयर, धनसा में 3.25 हेक्टेयर, सरलाही में 3 हेक्टेयर, महोतरी में 2 हेक्टेयर आ सिरहा में 0.35 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त कैल गेल अछि। हुनका अनुसार वन संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धन के लेल प्रदेशक विभिन्न जिला में गत आर्थिक वर्ष में 32,39,810 गाछ उत्पादन का 261.77 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कैल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनक आयात निर्यात अगस्त में उल्लेख रूप में बढ़ल अछि। विश्वव्यापी कृत्रिम बौद्धिकता AI प्रविधिक विस्तारक संगे सेमीकंडक्टर कंप्यूटिंग हार्डवेयर सहित प्रविधि जन वस्तुक मांग बढ़ला पर चीनिया व्यापारी एक गति लेल जनौलक अछि। भंसारक सामान्य प्रशासन के अनुसार अगस्त में चीनक निर्यात 25% से बढ़ल अछि। जुलाई में ई वृद्धि 23.9% छल। आयात सेहो 28.2% से बढ़ल अछि। ई जुलाई के 27.5% से अधिक थिक। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आज मनाया गया जेंजी शहीद दिवस। रचनात्मक खबरदारी और कार्य संपादन की समीक्षा निरंतर जारी रखने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का आग्रह। भोटेकोसी बाढ़ में अब तक 1364 लोगों की मौत की पुष्टि। धादिंग के कृष्णभीर में अवरुद्ध सड़क को सुचारू करने में अभी 10 दिन और लगने का अनुमान। और भारत बांग्लादेश रेल सेवा पुनः शुरू करने को लेकर वार्ता। अब समाचार विस्तार से। जेंजी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं की स्मृति में आज नेपाल में पहली बार जेंजी शहीद दिवस मनाया गया। दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीदों के योगदान को स्मरण करते हुए प्रौद्योगिकी, नवाचार और परिवर्तन की नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रपा के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि सड़क से नव युवाओं द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देने की जगह पर समय ने उन्हें खड़ा कर दिया है। सभापति लामिछाने ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जेंजी आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल के आह्वान पर हुआ आंदोलन नहीं था। सभापति लामिछाने ने बदलाव के लिए अब इस देश में किसी भी माँ की गोद सुनी न हो ऐसी कामना करते हुए नागरिक अधिकार, विधि का शासन और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की मांग करते हुए आवाज उठाने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी अमर शहीदों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आंदोलन के दौरान अंग भंग होने वाले, घायल होने वाले तथा मानसिक एवं शारीरिक चोट झेलने वाले सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य संबंधित परिवारों की उचित देखभाल, घायलों का पूर्ण उपचार तथा दीर्घकालीन पूर्व स्थापना की जिम्मेदारी पूरी करेगा। सभापति लामिछाने ने सभी युवाओं, नागरिक समाज और आम जन समुदाय से रचनात्मक निगरानी बनाए रखने तथा कार्य संपादन के निर्मम समीक्षा निरंतर जारी रखने का भी अनुरोध किया है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने कहा है कि सरकार जेंजी आंदोलन में शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेंजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज द्वारा आयोजित स्मृति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन कायम करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गृह मंत्री गुरुंग ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, देश में सुशासन कायम होगा और भ्रष्टाचार का अंत होगा। हमारी मांगे और सपने पूरे नहीं होने हैं तो देश में एक और गोली चलनी चाहिए, वही भी मेरे सिर से। उन्होंने कहा कि अब तक उनके शरीर में प्राण है, वे किसी नेपाली को दुख नहीं होने देंगे। उन्होंने जेंजी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले युवाओं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी और सुशासन की मांग को सरकार गंभीरता से लागू करने का प्रयास कर रही है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि पिछले वर्ष जेंजी विद्रोह के दौरान युवाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जेंजी शहीद दिवस के अवसर पर आज रेडियो नेपाल से बात करते हुए संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि जेंजी विद्रोह की नींव पर बनी वर्तमान सरकार युवाओं की मांग के अनुसार देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करते हुए सुशासन कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन भाद्र 10 गते आई अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित नागरिकों की खोज, बचाव और राहत कार्य में फिलहाल केंद्रित है। इसके बावजूद सरकार अपने मिशन से पीछे नहीं हटी है और लगातार इस दिशा में काम करती रहेगी।
सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित नागरिकों को केंद्र में रखकर राहत बचाव तथा पुनर्स्थापना का कार्य प्रभावी बनाने का आग्रह किया है। नुआकोट स्थित होल्डिंग सेंटर के निरीक्षण के दौरान सभामुख अर्याल ने कहा कि राहत वितरण में एक द्वार प्रणाली लागू कर स्थानीय तह के वार्डों के माध्यम से राहत सामग्री वितरित की जानी चाहिए। रसुआ की भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1,364 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बरामद शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूना संग्रह सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब तक 1,140 शवों को जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से दफनाया गया है। शवों की पहचान के लिए मृतकों के 1,280 और उनके परिजनों के 1,412 सहित कुल 2,692 डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। इसी तरह पहचान नहीं हो सके 1,310 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक लापता 4,077 लोगों की तलाश जारी है। इसी तरह विभिन्न जिलों में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में 3,245 लोगों को रखा गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।

0: प्राप्त गरौँ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। बाढ़ के बाद आपदा के समय सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह, गलत सूचना तथा सामाजिक सहिष्णुता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ नेपाल पुलिस सक्रिय हुई है। नेपाल पुलिस ने सामाजिक सहिष्णुता को आघात पहुंचाने वाले अभिव्यक्ति सहित वीडियो सामग्री प्रसारित, पोस्ट या शेयर कर समाज में घृणा, द्वेष और अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निगरानी और पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के माध्यम से असंबंधित टिप्पणियां कर समाज को भ्रमित नहीं करने का अनुरोध करते हुए नेपाल पुलिस ने निगरानी का काम तेज किया है। नेपाली कांग्रेस के 15वें महाधिवेशन के तहत वार्ड अधिवेशन आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने इससे पहले वार्ड अधिवेशन 24 गते से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन रसुआ की भोटेकोसी में आई बाढ़ के कारण अधिवेशन को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस निर्वाचन समिति के संयोजक प्रेम बहादुर खड़का ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वार्ड अधिवेशन 3 और 4 आश्विन को आयोजित किया जाएगा। आगामी 7 आश्विन को गाँव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका और महानगर पालिका के अधिवेशन होंगे। इसी तरह 10 आश्विन को प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन और प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन संपन्न करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस का केंद्रीय महाधिवेशन आश्विन 16 से 19 तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग के कृष्णभीर में अवरुद्ध सड़क को पूरी तरह संचालित करने में अभी करीब 10 दिन लगने का अनुमान है। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण तटीय क्षेत्र के कटाव से सड़क नीचे की ओर धंस गई थी। भाद्र 14 गते से बंद सड़क को संचालित करने के लिए पिछले 5 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रैक खोलकर धंसे हुए स्थान के किनारे की ओर से सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। छोटे बड़े मिलाकर प्रतिदिन 7 से 9 डोजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह तेज गति से काम जारी हो रहा है और करीब 10 दिनों में कृष्णभीर की सड़क की मरम्मत कर यातायात संचालित किया जा सकता है। ऐसा नागढुंगा मुगलिंग सड़क परियोजना के कंसंट्रेट फील्ड इंजीनियर अशोक देव कोटा ने बताया है। भूस्खलन के कारण 3 दिनों से बंद करनाली राजमार्ग का सुरखेत खंड फिर से सुचारू हो गया है। रविवार शाम करनाली राजमार्ग के अंतर्गत सुरखेत के 12ताल गांव पालिका 7 औलीसी से सड़क के ऊपर से आए भूस्खलन के कारण राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। 2 दिनों के लगातार प्रयास के बाद सड़क डिवीजन कार्यालय सुरखेत और दैलेख के संयुक्त प्रयास से राजमार्ग को फिर से संचालित किया गया है। लगातार बारिश के बाद विभिन्न स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण 3 दिनों से बंद साफे मातड़ी सड़क आज से फिर संचालित हो गई है। सड़क विभाग के 2 जेसीबी की मदद से भूस्खलन का मलबा हटाने के बाद सड़क को संचालित किया गया है। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी डोरेंद्र निरौला ने दी। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय के नजदीक कारागार मोड़, सेलागाड़, सुबाकांद, रापका और बीरेखोला सहित विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। लगातार बारिश के कारण मलबा हटाने में कठिनाई होने से सड़क संचालन में कुछ देरी हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत और बांग्लादेश ने स्थगित यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के विषय पर 3 दिवसीय अंतर सरकारी रेलवे बैठक के माध्यम से वार्ता शुरू की है। बांग्लादेश रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक मोहम्मद नजमुल इस्लाम ने बताया कि यात्री रेल सेवा कब और किन किन मार्गों पर फिर से शुरू की जाएगी, इसका निर्णय बैठक के बाद ही किया जाएगा। उसके अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस अगस्त 2024 से स्थगित है। मालवाहक रेल सेवा हालांकि लगातार संचालित हो रही है। बैठक में भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य सहित अधिकारी तथा बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल है। बैठक में वित्तीय हिसाब किताब, बकाया राशि, सीमा पार रेल आवागमन, परिचालन दक्षता, रेल समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। वर्ष 2024 में शेख हसीना की सरकार के अपदस्त होने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ने के साथ यात्री रेल संपर्क प्रभावित हुआ था। फरवरी 2026 में बांग्लादेश ने नई सरकार गठन के बाद संबंधों में सुधार और आवागमन को सुगमन बनाने का प्रयास आगे बढ़ा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज मनाया गया जैनजी शहीद दिवस। रचनात्मक खबरदारी और कार्य संपादन की समीक्षा निरंतर जारी रखने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का आग्रह। भोटे कोसी बाढ़ में अब तक 1,364 लोगों की मौत की पुष्टि। धादिंग के कृष्णवीर में अवरुद्ध सड़क को सुचारू करने में अभी 10 दिन और लगेगा समय। और भारत बांग्लादेश रेल सेवा पुनः सुचारू करने को लेकर वार्ता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।